0: जय श्री वेवा।
1: इसके स्वामिनी ओब सबविन्म सुई शुद्धे सिल सुई शुद्धतावे उल्पत बोहन से में एही नो बोहन से गे आत्मे नंगे आनु भावेन में पांडु परिशुद्धवात करन में न प्याय दिब अपे से अदुने में पांडु रापु देसा अपे स्वामिन वने जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री सरी रेयात श्री रुधी रेयात बावत पत्वनु संदहाये उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पूप कमेत्तिन पवरादिये मिट पेर पूपे रागे नो बहान से तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन सिय श्राव के इंट दुन सेक ओब सम में गेन अनुभाव करन सब विन में ओबुदेसा पवरादिये नु लबन मागे शरीर आई රාත්‍රි භෝජනයේ වැළඳු පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදාමසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුරුණු ලබන්නේ මාස්සී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ

0: आला हे दिलियाली हम आला दिले वाले ई खाती हाले हम आला दिलियाली खाती आला हे के दिलियाली खाती दाले रेले वसुत बड़ा अनड़ा वाली बा हे मैंने ले थे मा खाती दाले सोए नवत लदे अशुद्ध बल यीशु स्वांसे के नाम में फले आओ
1: देखते हम मा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के दिलियाली हम आती
1: रे बे दे दे रे वा खिदा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माथिलिया ले ओबने सुति वेवा स्वामीन वांस ओबांस उदाउ करन ने किने केनाट